0: sir.
1: Yes, hi.
0: आपके साथ एक सेल्फी ले लूं प्लीज.
1: Why not? Sure.
2: Hey, 你是第一次来吗？
3: 是的。
2: 哦，欢迎你加入训练营。
3: 嗯，你呢？
2: 去年我都进入世界杯大名单了。别紧张，小妹妹，明天训练场见。
4: गांव खड़ी इधर आ क्या यार ये तेरे गांव का कैंप है क्या सीनियर्स का कैंप है ये सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए और ये सीनियर्स का नेट है चल निकल इधर से निकल बॉल तो इधर नेट
3: हद से जी
4: क्या है रे देखो समझ में नहीं आता है क्या हां बोल रही हूं बॉल नहीं डालना है फिर भी
5: क्या चल रहा है इधर हां ए सीनियर्स है आपको पता नहीं सीनियर्स ऐसे ही होते हैं उनको एडजस्ट करना होता है प्रैक्टिस का पहला दिन है समझे समझाओ ना
3: वो सब तो मैं कहा जो सिर्फ 自己训练投球
4: 呢
6: दिमाग खराब कर दिया
3: 算了算了他就这样
2: 这么难吃这里都是北印度餐我们只能吃这个
3: 一点盐都没有
2: 没错你最近是怎么了
7: Kausalya तेरे बॉलिंग में पहले जैसा वेरिएशन नहीं है रुजला तू डाल
2: Gaitli投得非常好投球路线和距离再精细一些加油
3: 好的
2: 加油
3: 好的谢谢
2: 怎么了快吃啊
3: 不想吃没胃口
2: 吃不好睡不好是没体力的喂谁让你站那儿的

0: 哇，
1: 这球太棒了！加油 ，Kose， 看你的，
2: 注意他的球速。
3: Nelson, focus करो यार मैच में। चलो चलो शबाश यार गर्ल्स, पकड़ेंगे।

0: 投塞，右侧右侧，不要投右侧球，投另一边。
1: 加油加油，投塞！
0: 好球，扣塞！
2: 太棒了，教练，
1: 扣塞的投球太快了。
3: 好了好了，没什么了不起的。
0: 怎么了？
4: सर आपने तो ऑफसाइड में बॉल डालने के लिए बोला था।
5: बाहर जाके कौसी से पूछ लेना।
3: 这是什么事的？连乡巴佬都能来打球了，真是走了狗屎运了。